90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: प्रार्थना अभवत्। ततः अभ्यास समयः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य आरम्भः भवति एकेन सम्भाषणेन। सम्भाषणार्थम् अत्र मम सखी वैशाली मया सह अस्ति। सा मथुरां गत्वा आगतवती। सा मथुरातः प्रसादम् आनीतवती। प्रसादं दातुं मम गृहम् आगतवती अस्ति। तर्हि सम्भाषणं शृण्वन्तु। समझ में आया मैंने क्या क्या कहा? वैशाली मेरी सखी है, वह मथुरा जाके आई है, उसने साथ में प्रसाद लाया है और प्रसाद देने के लिए वह मेरे घर आई है। तो संभाषण ऐसे होता है। संभाषणम शृण्वन्तु।
1: नमस्ते।
0: आई सखी, आगच्छतु आगच्छतु।
1: प्रसादम स्वीकरोतु।
0: प्रसादः वा, कुतः?
1: मथुरातः आनीतवती।
0: मथुरातः? मथुरा कुत्र अस्ति?
1: मथुरा उत्तर प्रदेशे अस्ति।
0: ओहो, बहु दूरं। किमर्थं मथुरां गतवती?
1: श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानं खलु मथुरा, तस्य दर्शनार्थं गतवती।
0: ओ, तत्र किं दृष्टवती?
1: तत्र कृष्णमन्दिरं वृन्दावनं च दृष्टवती।
0: भवती कति दिनानि तत्र वासं कृतवती?
1: अहं 3 दिनानि तत्र वासं कृतवती।
0: ततः कदा प्रत्यागतवती?
1: प्रातःकाले एव आगतवती।
0: ओ, प्रातःकाले एव आगतवती, उत्तमम्। कृष्णजन्मभूमेः दर्शनं कथम् आसीत्?
1: बहु अविस्मरणीयम् अस्ति। निश्चयेन वयं सर्वे एकवारं वा मथुरां गच्छामः।
0: निश्चयेन, वयं निश्चयेन एकवारं वा मथुरां गच्छामः। तर्हि एतत् सम्भाषणं भवन्तः श्रुतवन्तः। अत्र सप्तककाराणां उपयोगः कृतः अस्ति। सप्तककाराः इत्युक्ते किम्? सप्त प्रश्नवाचकशब्दाः। अहं किञ्चित् स्मारयामि। प्रसादः वा, कुतः? तर्हि उत्तरम् आसीत् मथुरातः। मथुरा कुत्र अस्ति? मथुरा उत्तरप्रदेशे अस्ति। किमर्थं मथुरां गतवती? श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानं खलु मथुरा, तर्हि कृष्णदर्शनार्थं मथुरां गतवती। तत्र किं दृष्टवती? कृष्णमन्दिरं वृन्दावनं च दृष्टवती। भवती कति दिनानि तत्र वासं कृतवती? तर्हि उत्तरमासीत् 3 दिनानि तत्र वासं कृतवती। ततः कदा प्रत्यागतवती? प्रातःकाले एव। कृष्णजन्मभूमेः दर्शनं कथम् आसीत्? कथं? बहु अविस्मरणीयम् इति उत्तरम् आसीत्। तर्हि के शब्दाः? कुतः, कुत्र, किं, कति, कदा, कथम्, एते सर्वे शब्दाः वयम् अत्र सम्भाषणे श्रुतवन्तः। अस्तु, अत्र भगवान् श्रीकृष्णः कः? भगवान् श्रीकृष्णः एकः अवतारः। अस्माकं 10 अवताराः सन्ति, 10 अवताराः। भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः स्वयम् एव वदति, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। भगवान् वदति, अहं युगे युगे प्रतियुगं सम्भवामि, पृथ्वीम् अवतरामि। इत्युक्ते किम्? तर्हि अहं कृष्णरूपेण, वराहरूपेण, बलरामरूपेण वा आगच्छामि। अस्माकं 10 अवताराः के? तेषां नामानि सर्वे जानन्ति एव, एकवारं वदामि च। मत्स्यः, कूर्मः, वराहः, नरसिंहः, वामनः, परशुरामः, रामः, कृष्णः, बुद्धः, कल्की च। तो जो श्लोक मैंने अभी कहा वो ऐसा गाते हैं, और ये गीता का श्लोक है। एकस्य श्लोकस्य अर्थं पश्यामः। एक ही श्लोक का अर्थ देखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति, हे भारत यानी हे अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति, अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति, तदा अहम् आत्मानं सृजामि, अत्र अस्ति यदा तदा, क्या मतलब हुआ? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि यानी धर्म नीचे जाता है, धर्म की अधोगति होती है या धर्म कम हो जाता है, तब हे अर्जुन अहम सृजामि, अहम अवतारम स्वीकरोमि, मैं अवतार लेता हूँ। वैसे ही और भी एक बात बोली है उन्होंने, धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्कर्ष होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो यहाँ मन में प्रश्न आया होगा, धर्म यानी कौन सा धर्म? न न न, धर्म का वह अर्थ नहीं है। भगवद गीता जो ग्रंथ है न, वो यूनिवर्सल है, सारे विश्व के लिए है। धर्म का अर्थ होता है अच्छा काम, धर्म यानी पुण्य कर्म। मगर जब लोग पुण्य कर्म करना नहीं चाहते, पुण्य कर्म जगत में कम होते जाता है और पाप कर्म बढ़ते हैं, तो भगवान बोलते हैं मैं खुद की इच्छा से अवतार लेके पृथ्वी पे आ जाता हूँ। संस्कृत सीखने का बहुत फायदा है ना, आपके ध्यान में बहुत सारे शब्द आए होंगे। और दूसरा भी श्लोक है, वो भी एक बार बताऊं उसका अर्थ भी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ भगवान ने कहा है मैं हर एक युगों में अवतार लेता हूँ। किस लिए अवतार लेता हूँ? तो साधुओं का रक्षण करने के लिए, परित्राणाय साधूनां, दुष्कृतानाम विनाशाय, जो दुष्कृत्य है, दुष्कृत्य करने वाले लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए, यानी लोगों को पुण्य कर्म करने के ओर प्रेरणा देने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। समझ में आया? तो ये श्लोक बहुत बहुत बहुत अच्छे है, गीता के बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भगवद गीता के ये दो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर जब थोड़ा संस्कृत भी जानते हैं तो श्लोकों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए आइए वेणुध्वनि पे संस्कृत सुनिए, संस्कृत सीखिए, संस्कृत बोलिए। धन्यवाद। अभ्यास अभवत। इदानीम राम रक्षा स्तोत्र पठनम।
2: श्री गणेशाय नमः।
3: श्री गणेशाय नमः।
2: वेदांत वेद्यो यज्ञेश।
3: वेदांत वेद्यो यज्ञेश।
2: पुराण पुरुषोत्तमः।
3: पुराण पुरुषोत्तमः।
2: जानकी वल्लभ श्रीमान।
3: जानकी वल्लभ श्रीमान।
2: अप्रमेय पराक्रमः।
3: अप्रमेय पराक्रमः।
2: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
3: इत्येतानि जपन् नित्यम्।
2: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः।
3: मद्भक्त श्रद्धयान्वितः।
2: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
3: अश्वमेधाधिकं पुण्यम्।
2: संप्राप्नोति न संशयः।
3: रामं दूर्वादलश्यामम्।
2: पद्माक्षं पीतवाससम्। स्तुवन्ति नाम भिर्दिव्यैर्। नते संसारिणो नरः। रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरम्।
3: सीतापतिं सुन्दरम्।
2: काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिम्। विप्रप्रियं धार्मिकम्। राजेन्द्रं सत्यसन्धम्।
3: दशरथतनयम्।
2: श्यामलं शान्तमूर्तिम्।
3: वन्दे लोकाभिरामम्।
2: रघुकुलतिलकम्।
3: राघवं रावणारिम्।
2: रामाय रामभद्राय।
3: रामचन्द्राय वेधसे।
2: रघुनाथाय नाथाय। सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम।

0: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि
0: श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
1: श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये
0: माता रामो मत्पिता रामचंद्रः
1: माता

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली विनोदुनी 90.4 FM वरती तुम्ही ठेवून आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: जागरूकता का महत्व. आजकल असली चीजें मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि जमाना ही बड़ा बनावट का है. हर जगह मिलावट है जिससे बेईमानी और झूठ का बोलबाला है. सच्चाई और ईमानदार व्यक्ति का तो जीना ही दूभर हो गया है, लेकिन ऐसे ठगी और बनावटी के माहौल में निराश होने की कोई जरूरत नहीं. बस चाहिए थोड़ी सी जागरूकता. जागरूक व्यक्ति कभी झूठे दिखावे भरवा नहीं सकता. जागरूकता वह चेतना जगाने वाला गुण है जिससे सत्सद विवेक बुद्धि का विकास होता है. जागरूकता अर्थात किसी भी बात को जानने के लिए सदा उत्सुक बने रहना या किसी भी अचानक आने वाली परिस्थिति को समझने के लिए चौकन्ना रहना. आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति खुद को सचेत रखना भी जागरूकता ही है. अचानक के संकटों का मुकाबला करने के लिए सदा चाहिए जागरूकता. सदा जागृत रहने की आदत व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है. संवेदनशील व्यक्ति खुद को सचेत रखता है और सदा उन्नति को पाता है. व्यक्तिगत उन्नति के लिए जहां आत्म जागृति की आवश्यकता है, वही समाज उत्थान में व्यापक रूप से लोगों को जागृत करने की आवश्यकता होती है. स्वतंत्रता आंदोलन में देश के कर्णधारों ने अनेक विधियों से जन जागरण कराया. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में उस समय गणेश उत्सवों को सार्वजनिक रूपों से मनाने की परंपरा शुरू कर जन जागृति का बिगुल बजाया. वर्तमान समय गांधीवादी नेता अन्ना हजारे भी मूक अहिंसक आंदोलन कर सारे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागृति की लहर पैदा कर चुके हैं. वर्तमान समय में दुखों से मुक्ति के लिए परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं और अज्ञान का अंधेरा मिटाकर जन जन में आध्यात्मिक जागृति करा रहे हैं. वास्तव में आत्म जागृति ही दुखों से मुक्ति पाने का महामंत्र है. अतः जागरूकता को अपनाएं और धोखे से बचिए. ऐसी हमारी शुभकामना.

0: वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: दिशा तक जवाबी शुल्क लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
2: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
1: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
2: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
1: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्र

0: बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित है। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है, उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी युद्ध पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
6: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी आयात शामिल है। अमेरिका के 600 से अधिक उत्पादों

0: 15 से 50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारणीय स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75 से 80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इससे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इससे मापुसा पड़जी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पड़जी।
1: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
3: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगराजी की 6ठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी

नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो है फोन एडिक्शन के बारे में। आज हम जान लेंगे क्या होता है ये और किस तेजी से ये बढ़ रहा है, इसके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या परिणाम होता है, इन सभी के बारे में आज के शो में चर्चा होगी। और इसके ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस निमहांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर है। उसी के साथ निमहांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में कार्यरत है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है, जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा सर स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। डॉक्टर आनंद असिस्मेंट साइकोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन डिवीजन के फैकल्टी इंचार्ज भी है, जो भारत के लिए स्वदेशी

0: मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास और मानकीकरण पर कार्य करता है। सर वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आज हम बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं सर, कि फोन एडिक्शन कैसे होता है। उसके बारे में सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये फोन या फिर मोबाइल एडिक्शन होता क्या है।
1: तो मैम, मोबाइल फोन एडिक्शन ये ऐसी एक बिहेवियरल एडिक्शन है जिसके लिए सभी लोग रिस्क पे हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन रिस्क पे है, तो जो जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं वो सभी रिस्क पे हैं। और रिस्क पे क्यों हैं? क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसे कि उसमें गेमिंग एप्लीकेशन है, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हैं, वेब सीरीज एप्लीकेशन हैं। तो जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, ये बनाए इसलिए जाते हैं कि ये हम इनको बार बार यूज करें। वो बना ही इसी तरीके से जाता है कि उसमें हमें बहुत रीइंफोर्समेंट मिलता है, बहुत रिवॉर्ड मिलता है, खुशी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, सरप्राइज मिलता है, हमारा जो मूड है वो एकदम तुरंत ही बदल जाता है उसे देखने से। उसे हमें एकदम आनंद मिलता है, जो कि बाकी चीज़ों में हमें उतनी जल्दी आनंद नहीं मिलता। अगर हम कोई और कार्य करेंगे, घर पे कोई और कार्य कर रहे हैं, अगर कोई एडोलेसेंट हैं, कोई नवयुवक हैं, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहे हैं, या अपने किसी सहपाठी के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ में बात कर रहे हैं, तो उनको तुरंत इतना खुशी का आभास नहीं होगा। लेकिन जब भी वो कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या उसे कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो तुरंत ही हर आधे मिनट में उनको एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो डिजाइन ही इसी तरह के किए गए हैं कि उनको एकदम खुशी तुरंत ही मिल जाए। और जितनी बार उनको खुशी मिलती है, उतनी बार ये उनका दृढ़ संकल्प हो जाता है धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में कि इसको यूज करने से हमें बहुत खुशी मिलती है, इसे हमें यूज करने से आनंद मिलता है।
0: अच्छा।
1: तो एक हो गया कि जो मोबाइल फोन है, जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं, वो अडिक्ट होने के लिए ही बनाए गए हैं कंपनीज द्वारा।
0: बाप रे।
1: क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप उस पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं।
0: करेक्ट।
1: और उसमें कई दूसरे तरह से जो हमारे अंदर खुद के अंदर कई सारे वल्नरेबिलिटी रहती है, और इसको हमें तब पता लगता है जब हम देखते हैं कि हम उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, जैसे कि एक बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन होना। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ही मोबाइल फोन एप्लीकेशन को या स्मार्टफोन को आप काफ़ी देर तक यूज़ करते हैं, और आपको अपने समय कितना बीत चुका है उसका अंदाजा चला जाता है।
0: एग्जैक्टली।
1: उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। कोई भी और काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे जैसे एकदम तुरंत फ्री होते हैं तो फिर आपका हाथ वही मोबाइल फोन में जाएगा, उसे आप ओपन करेंगे। तो ये एक पहला लक्षण होता है प्री ऑक्यूपेशन। दूसरा लक्षण होता है, इसे बोलते हैं विड्रॉल।
0: अच्छा।
1: विड्रॉल ऐसा होता है कि जब भी आप अपने स्मार्टफोन से दूर हैं तब आपको चिड़चिड़ापन लगता है, तब आपको थोड़ी बेचैनी लगती है, तब आपको थोड़ी घबराहट होती है, या तब आपको गुस्सा आ जाता है। चाहे तो आप ये फोन आपके पास ना हो, हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, फोन का इंटरनेट का कनेक्शन खत्म हो गया हो, या किसी ने फोन आपसे घर में ले लिया हो। तो अगर ये हो रहा है तो इसका दूसरा लक्षण है, इसे बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम।
0: अच्छा।
1: और आपने देखा होगा कि बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें कि बच्चों से जब माँ बाप ने मोबाइल ले लिया, बच्चों में तुरंत एक तीव्रता से एक गुस्सा बेचैनी आ गई, जिससे कि माँ बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें कि देखा गया है कि बच्चों ने कुछ ऐसे एक्शन ले लिए जो कि बहुत घातक रहे हैं उनके लिए, उन्होंने कुछ फिजिकल वायलेंस कर दिया गया है। तो ये होता है विड्रॉल। तीसरा होता है टॉलरेंस। ये तीसरा लक्षण, टॉलरेंस का मतलब होता है पहले ही सिर्फ 5 मिनट यूज करने में, 10 मिनट यूज करने में ही आनंद मिल जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका समय जो है बढ़ता जा रहा है। पहले वो जो चीज़ 10 मिनट में खुशी देती थी वो 20 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, वो 1 घंटा हुआ, क्योंकि धीरे धीरे पहले खुशी का आभास आपको थोड़ी देर यूज़ करने में मिल जाया करता था, लेकिन अब उसको ज़्यादा देर तक यूज़ करना पड़ता है तब आपको संतुष्टि मिलती है। और धीरे धीरे इसी तरह टाइम जो होता है, पहले आधे घंटा भी नहीं, 10-15 मिनट से शुरू होता है धीरे धीरे कोई भी एप्लीकेशन, वो धीरे धीरे अब 1-2 घंटा 3 घंटा तक जा रहा है। एक बार जब स्टार्ट करते हैं तो रुक नहीं पाते हैं। तो तीसरा लक्षण इसे बोलते हैं टॉलरेंस। चौथा लक्षण होता है कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो सब बोलते हैं बस 1 मिनट, 1 मिनट के बाद, बस अभी ये काम 1 मिनट के बाद करता हूं मैं। तो एक बार जब स्टार्ट किया उसके बाद कंट्रोल नहीं कर पाना उसे।
0: करेक्ट।
1: उसको बोलते हैं डिफिकल्टी टू कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने की डिफिकल्टी। तो ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण होता है कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में आप जो है आपकी इम्पैक्ट हो पा रहा है, मतलब उन पर असर पड़ रहा है, जैसे कि आप अपना जो स्कूल का काम है वो टाइम पे नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं, ऑफिस का काम टाइम पे ख़त्म नहीं हो पा रहा है, परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। इसकी वजह से आपके घर में आपके पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, दोनों जो घर में जो भाई बहन है और जो अलग और फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं इसकी वजह से। आप इसकी वजह से कई बार पैसे भी चुरा लेते हैं इसकी वजह से, क्योंकि उसमें से कुछ देखा आपने, वो चीज़ पसंद आ गई, अब उसे ख़रीदना है तो उसमें, तो ये बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। ये होने के बावजूद भी फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, और कई बार अगर आप रात को खाने के बाद इसे यूज़ करते हैं तो 3-4 घंटे रात को हो जाता है, 1 बज गया तब सो रहे हैं, तो स्लीप भी इससे डिले हो जाती है। तो ये पांचवा, छठा होता है कि आपके जो सोशल रिलेशनशिप हैं उसमें आपकी रुचि जो है कम हो जाती है। अब आपका मन नहीं करता लोगों से बातचीत करें, क्योंकि जैसे मैंने पहला बताया, लोगों से बातचीत करें, क्या कोई फंक्शन है घर में वह जाएं, या किसी ने आपको कम्युनिटी में फंक्शन में बुलाया हुआ है अपने कॉलोनी में, वहाँ जाने का मन नहीं करता क्योंकि वो अब रुचि लायक नहीं रहा। क्योंकि सबसे ज़्यादा रुचि, क्योंकि इतना ज़्यादा आनंद वो तो देंगे नहीं, जैसे मैंने शुरू में बताया वो एप्लीकेशन जो हैं वो ज़्यादा खुशी देते हैं आपको, तो उसमें टाइम बिताना। सातवां होता है कि जब भी आपका मूड जो है जब ख़राब हो जाए, जब चिड़चिड़ापन हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, या किसी से कुछ मनमुटाव हो जाए, तो उसी टाइम तुरंत आप मोबाइल फ़ोन का एक्सेस करते हैं और उस टाइम पे फिर उसको देखने के बाद आपका मूड ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं कि मूड मॉडिफिकेशन, आपका मूड जो है में परिवर्तन आ गया।
0: अच्छा।
1: और अपने आप मोबाइल फ़ोन को अपना मूड ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। और आखिरी है जो आठवां लक्षण है कि जब आप कितना, अगर कोई पूछे आप कितना टाइम बिताते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे, तो आप हमेशा कम ही बताते हैं क्योंकि आपको पता है कि कितना टाइम बिता रहे हैं आप। तो ये 8 लक्षण हैं, इन 8 लक्षण में से अगर कोई भी 5 लक्षण अगर आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को और किसी को भी जिनको आप जानते हैं अगर हैं, तो उनको डिजिटल एडिक्शन लगभग तय है।
0: अच्छा, मुझे लगता है जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी उनमें से कुछ गिने चुने लोग होंगे जो भी एज लिमिट की वजह से शायद होंगे, मतलब एज फैक्टर की वजह से, जिनको ये लत नहीं है, या फिर जो ज़्यादा समय अपना मोबाइल पे नहीं बिताते हैं। नहीं तो 90% लोग अभी मोबाइल से अडिक्ट हो चुके हैं और वो बहुत बड़ी लत लग चुकी है अभी लोगों को। तो मेरे ख्याल से सर, अभी ये जो सभी आपने लक्षण बताए या फिर जो एप्लीकेशंस है जो इतने अच्छी तरह से डिज़ाइन किए हैं कि लोगों को उस आदत लगे, उसकी वजह से ही ये जो लत है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो सर, क्या मोबाइल एडिक्शन को एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भी माना जा सकता है?
1: हाँ, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन को मानसिक स्वास्थ्य समस्या बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि जिसमें इसमें निमहांस ने, सर्विस फॉर हेल्दी यूज़र टेक्नोलॉजी क्लिनिक निमहांस जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हमने काफ़ी रिसर्च करी है इसके बारे में, और इसमें पाया गया है कि ये बहुत सारे युवकों में, एडोलेसेंट्स में और जो यंग अडल्ट हैं उनमें ये पाया जा रहा है। और हमने यहाँ पे भी और बाकी जितनी भी दुनिया में रिसर्च की जा रही है उसमें पाया गया है कि ये एक मानसिक समस्या बन गई है। अगर मैं कुछ आंकड़े आपको इसको बताऊं, तो हमने कुछ रिसर्च करी है जिसमें कि कर्नाटका में ही हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की, उसमें पाया गया लगभग 2700 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में हमने रिसर्च की गई थी, उसमें कुछ प्रेवलेंस डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें 29% को पाया गया कि वो माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन उनमें पाया गया, 16% लोगों को मॉडरेट इंटरनेट एडिक्शन पाया गया, और 0.5% लोगों को सीवियर इंटरनेट एडिक्शन पाया गया। और उसमें ये पाया गया कुछ रिस्क फैक्टर भी पाए गए कि, तो इसमें ये पाया गया कि जो बॉयज हैं, जो मेल यूथ है, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं, और जो कि अपने घर से दूर रहते हैं, जो कि हॉस्टल्स में रहते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, और जो कि लगभग 3 से ज़्यादा घंटे इंटरनेट का यूज़ या स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं अपने आनंद लेने के लिए या अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या कोई और एक्टिविटीज़ के लिए, वो ज़्यादा रिस्क पे हैं।
0: अच्छा।
1: और एक साइकोलॉजिकल समस्या और जो आगे उभर के आ रही है वो है डिप्रेशन। वो ये भी देखा गया है कि स्टडी में जिन लोगों को डिप्रेशन था उन लोगों का ज़्यादा रिस्क बन जाता है स्मार्टफोन को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने का, जैसे बोलते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन होने की उनको ज़्यादा रिस्क है। तो ये कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। और एक हमने शट क्लिनिक निमहांस से 2015 में एक सर्वे हमने बैंगलोर और आसपास के जो सब अर्बन एरिया थे, रूरल एरियाज में, वहाँ किया था, और ये सर्वे 2755 लोगों पे किया गया था, एज ग्रुप था 18 से 30 साल, और इसमें हमने क्या पाया गया कि इसमें 1.3% लोगों को इंटरनेट एडिक्शन पाया गया, 4.1% लोगों को स्मार्टफोन एडिक्शन पाया गया, 3.5% लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स एडिक्शन पाया गया, 4% लोगों को शॉपिंग एडिक्शन पाया गया, गैम्बलिंग एडिक्शन जिसे बोलते हैं 1.2% पाया गया और वीडियो गेम एडिक्शन 7%।
0: अच्छा, तो क्या कहते हैं आपकी स्टडी के ये जो आंकड़े अभी आपने बताए, तो कौन से स्टेज पे है हम अभी?
1: ये आप मान सकते हैं कि एक कम्युनिटी में तीनों तरह के सिवियरिटी पाई जा रही है, माइल्ड भी हैं, मॉडरेट भी हैं और सिवियर भी हैं।
0: अच्छा,
1: तो जो माइल्ड हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 27-29% लोग माइल्ड इंटरनेट एडिक्शन है जो भी असेसमेंट जो रिसर्च की गई है इंडिया में, और लगभग 16% लोग हैं जो कि मॉडरेट हैं। तो अगर देखा जाए तो सब ज़्यादातर भी माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में है, और इस चीज़ को अगर अभी हमने ध्यान नहीं दिया गया, विशेषज्ञों ने नहीं ध्यान दिया और बाकी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि स्कूल में टीचर्स, घर पे पेरेंट्स और बाकी हॉस्पिटल्स में मनोवैज्ञानिक, इन सभी को इस समस्या से मिलकर जूझना पड़ेगा। इससे हमें जूझने की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आ पाते हैं, जिनको कि मॉडरेट या सीवियर नहीं है वो यहाँ नहीं आएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे हेल्प लेने के लिए, लेकिन जो माइल्ड हैं वो हो सकता है कि हमारे पास ना भी पहुँचें, वो एक्सेस होगा, वो स्कूल में है, वो कॉलेजेस में है और वो घर पे हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे इसको तो जो माइल्ड है वो धीरे धीरे मॉडरेट बनेंगे और जो मॉडरेट हैं वो धीरे धीरे सीवियर की तरफ जा सकते हैं।
0: करेक्ट, वो शिफ्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर अभी इतना सब कुछ आपने बताया तो इसका मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करने से शारीरिक और मानसिक रूप पे क्या असर पड़ता है?
1: तो इसमें हमने ये पाया गया कि इसमें बहुत सारी तकलीफें आपको हो जाती हैं, जैसे कि कुछ तरह के फिनोमिना मैं आपको बताऊंगा। एक बोलते हैं इसे, कहते हैं कि शारीरिक समस्याओं से, इससे कि आपकी गर्दन में, शोल्डर्स में और पीछे जो स्पाइन है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें पेन होना, इन्फ्लेशन होना। अच्छा। हो जाता है, इसे बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जब आप सीधे खड़े रहते हैं और आपका अगर सर बिल्कुल टिल्ट नहीं हुआ है, 0 डिग्री पे रहता है, तो लगभग आपका जो मस्तिष्क है वो 4 से 5.5 किलो का उसका वजन होता है। ठीक है, जैसी जैसी ये आपका शरीर का जो मस्तिष्क का जो आपका जो गर्दन का टिल्ट है अगर वो 15 डिग्री होता है तो आपका लगभग जो जो आपकी जो पुल है धरती की तरफ, ग्रेविटेशनल पुल, वो 12 kg का हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे ये 30 डिग्री का टिल्ट होगा ये 18 kg का हो जाएगा, पुल करेगा, इतना ग्रेविटेशनल पुल होता है। जब 45 डिग्री पे टिल्ट रहेगा आपका नेक तो ये 22 किलो का ग्रेविटेशनल पुल करता है, और जब ये पूरा 60 डिग्री पे, जैसे कि आप पूरा अपने बिल्कुल ही इमर्स हो जाते हैं अपने गेमिंग एक्टिविटी में, सोशल मीडिया में या कोई वेब सीरीज वॉचिंग में, तो जब ये 60 डिग्री टिल्ट होता है तो लगभग ये 27 kg का ग्रेविटेशनल पुल होता है। और अगर ये एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब अगर ये लंबे समय तक 2-3 घंटा भी इस सिचुएशन में रहें और रोज लगभग, तो ये आपको कुछ समय बाद आपकी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स लूज होने लग जाती हैं।
0: अच्छा।
1: और इसकी वजह से आपको पेन और ये नेक में स्पैज्म रहता है। तो ये है टेक्स नेक सिंड्रोम। कुछ लोगों को जो जरूरत से ज़्यादा गेमिंग करते हैं उनके हाथ में कार्पल टनल सिंड्रोम, जो जैसे कि जैसे पहले बोलते थे कि जो ज़्यादा टाइप करते हैं उनको होता है, अब जो ज़्यादा गेमिंग करते हैं वो अपनी इंडेक्स फिंगर, थंब और जो सेकंड फिंगर है इसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उनके यहाँ पर व्रिस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को ड्राई आइस की शिकायत होती है क्योंकि उनकी आइस ड्राई हो जाती हैं, बिकॉज जो गेमिंग है और सोशल मीडिया है ये आपकी जो नॉर्मल ब्लिंकिंग होती है आई मूवमेंट ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आपका एक मिनट में लगभग 20-30 बार ये आइज ब्लिंक होती हैं, लेकिन जब आप गेम्स खेलते हैं, स्पेशली जब सोशल मीडिया पर रहते हैं, जब रील्स देखते हैं आप एक के बाद एक, तो ये आइज बंद होने का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं होता।
0: करेक्ट।
1: तो जब वो नहीं होता है तो आपकी आइज ड्राई होने लग जाती हैं और वो वाटरी आइज बन जाती हैं। तो ये कुछ फिजिकल तकलीफें जो हो जाती हैं, कुछ मानसिक इनसे फिनोमिनाज भी निकल के आते हैं, जैसे कि वो जो बोलते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब नो मोबाइल फोबिया। वो तब होता है जब आप अपने एक ऐसा डर, जैसे कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन से कुछ समय दूर रहें तो आप में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लग जाता है। तो रिसर्च ने पाया गया है कि ज़्यादातर ये सभी लोगों में पाया जाता है, और हमें सोचना है कि रिसर्चर्स ने ही बताया कि ज़्यादातर 72% लोग जो हैं वो 5 फीट से ज़्यादा अपने मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पाते हैं। तो ये इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया। ये किसी की वजह से भी हो सकता है, और कुछ इसमें इंडिया में पब्लिश्ड आंकड़े भी हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के आंकड़े देखा जाए तो माइल्ड नोमोफोबिया 41% लोगों में पाया गया, मॉडरेट 42% में, और सिवियर पाया गया 15.2% लोगों में, यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, 18-24 ईयर्स के बीच में।
0: अच्छा।
1: तो इसे बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया। और एक फिनोमिना होता है उसे बोलते हैं फोमो, आपको पता होगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपको लगता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं या और जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है जो कि आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, और अगर आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे तो आपसे वो बहुत ही जो फिनोमेना है, जो इवेंट है, वो मिस हो जाएगा और आप जो है उस ग्रुप से लगभग बाहर हो जाएंगे, आपका ग्रुप से वो जो टच चला जाएगा। इसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक मानसिक फिनोमेना है और इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करते हैं। इसके चलते ही लगभग 56% जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो लगभग 5 घंटे से ज़्यादा अपने मोबाइल फोन से दूर नहीं रह पाते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये थोड़ा सा पुराना डेटा है मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर अभी दोबारा रिसर्च की जाए तो ये समय जो है मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं रह पाएगा।
0: बिल्कुल,
1: आखिरी बार हम खुद ही सभी श्रोता सोच सकते हैं, आखिरी बार आप जब आप नहीं सो रहे हो तब आप ऐसा कोई टाइम बताइए जब 2 घंटे आप मोबाइल फोन से दूर रहे हो जगते हुए समय।
0: करेक्ट ना।
1: तो ये है नेक्स्ट फिनोमेना, इसे बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम ऐसा फिनोमेना होता है जब आपको लगता है कि आपका फोन बज रहा है या फिर आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है आपकी बॉडी के अगेंस्ट, लेकिन जब आप चेक करते हैं तो ना तो फोन आ रहा होता है, ना तो बज रहा होता है वो, और ना ही वो वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इसको बुलाता है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो ये हफ्ते में एक आध बार अगर हो जाए तो ठीक है, ये नॉर्मल माना जाता है मनोवैज्ञानिक भाषा में, लेकिन अगर ये 2 या 3 बार हो जाए हफ्ते में, अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एक लक्षण है, ये फिनोमिना है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है कि आपको, जो हमने शुरू में 8 चीजें बात करी थी वो क्राइटेरिया, आपको ये एडिक्शन हो सकता है। एक और एक फिनोमिना इसे बोलते हैं फबिंग। हिंदी में इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, फबिंग इसे बोलते हैं कि जब आप किसी से दूसरे से कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, जब आप किसी दूसरे से बात करना चाह रहे हो तो वो जो है व्यक्ति वो अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ है, वो कह रहा है कि मुझसे बात करो मैं सुन रहा हूँ, वो अपना मोबाइल फोन भी देख रहा है और आपसे बात भी कर रहा है। तो इसे लगता है कि बहुत ही नॉर्मल सी एक्टिविटी है, कोई इसमें हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये सिलसिला चलता रहे तो इससे 4 फंडामेंटल नीड्स जिसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो इन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उस रिश्ते में, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ अमाउंट ऑफ कंट्रोल कम्युनिकेशन में, क्योंकि जो आप बात करना चाह रहे हैं, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कम मिलता है उस रिलेशनशिप में, और धीरे धीरे अगर ये चलता रहे तो ये आपका जो रिश्ता होता है ये इमोशनली लेस सेटिस्फाइंग बन जाता है, और धीरे धीरे फिर वो रिश्ते में जो है डिप्रेसिव सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसको बोलते हैं फबिंग। ये सारे फिनोमिनाज जो हैं, ये मानसिक फिनोमिनाज जो हैं, ये धीरे धीरे मोबाइल फोन एडिक्शन के साथ में धीरे धीरे आने लग जाते हैं। तो इसको, इन सब फिजिकल प्रॉब्लम्स और ये मानसिक जो फिनोमिनाज हैं इनको अगर हम नज़र में रखें तो ये वाकई में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है और इसे एक मानसिक रोग माना जा सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझा है सर आपने, पर हम अपने बच्चों को ये लत लगी है या नहीं वो कैसे पता कर सकते हैं?
1: हाँ, तो यही जैसे मैंने बताया था कि पहला क्राइटेरिया है कि प्री ऑक्यूपेशन, वो सभी काम कर रहे हैं लेकिन उनका मन है कि जैसे ही उनको टाइम मिले एकदम तुरंत ही वो मोबाइल फोन पे वापस आके बैठ जाएं। सारे प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि दिमाग के पीछे यही लगा हुआ कि जैसे ही ये काम खत्म होगा सीधा मोबाइल फोन के ऊपर हाथ जाएगा, सीधा मोबाइल फोन में सोशल मीडिया खोलेंगे या कुछ व्हाट्सएप खोलेंगे या इंस्टाग्राम रील खोलेंगे या यूट्यूब रील खोलेंगे, तुरंत उनका वहां मन लगता है, उनका मन कोई और चीज करने का कर ही नहीं रहा है। हो सकता है वो तुरंत उठ के बाहर जाके खेलने जा सकते थे, तुरंत कुछ उठ के किचन से कुछ रखा हुआ आ गया है, अच्छी चीज कुछ मिठाई रखी है वो खा सकते थे, हो सकता है कुछ और शैतानी कर सकते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, वो कहाँ मिलेंगे, वो मोबाइल फोन के ऊपर मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं प्रीऑक्यूपेशन। तो ये क्राइटेरिया। दूसरा है, पहले वो सिर्फ 1/2 घंटा 15 मिनट में उसको मोबाइल फोन को छोड़ देते थे, अब वो उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं जब तक कि उनसे ये उनके हाथ से लिया ना जाए उनके, तो इसे बोलते हैं टॉलरेंस, जैसे मैंने बताया। तीसरा इनका सिम्टम है कि अब जो है उनको, अगर आप उनसे ले लेते हैं फोन तो उनका मूड जो है खराब हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है उनको, और फिर वो उसको ठीक नहीं कर पाते हैं बिना मोबाइल फोन के। चौथी चीज है कि ये भी देखा गया है कि उनको जब भी वो आपके साथ, पेरेंट्स के साथ कुछ मतभेद हो जाए, अनबन हो जाए या घर में कोई और बात हो जाए और वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, तो वो अपना मूड सही करने के लिए बोलते हैं कि मुझे थोड़ी देर फोन दो, मुझे थोड़ी देर फोन देखना है। जब माँ पूछते हैं क्यों देखना है तो कहते हैं नहीं मुझे फोन दे दो, मैं फोन देखने के बाद मेरा मूड ठीक हो जाता है। तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथी चीज़ है कि जब उनसे ये और जब भी देखा जाए कि अगर उनसे बोला जाए कि अभी आधा घंटा हो गया है, अभी से बंद करके आ जाओ, तो उनसे खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग, खुद से कंट्रोल नहीं किया जाता, खुद से बंद नहीं किया जाता, स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बंद नहीं हो पा रहा, तो डिफिकल्टी टू कंट्रोल। तो ये सब अगर लक्षण उनमें अगर आपको दिख रहे हैं, और दूसरा कि उनको अब मन नहीं करता है

0: हार जाके अपने दोस्तों के साथ खेलने का, उनको मन नहीं करता अब दूसरों से बात करने का, उनको मन नहीं करता कोई और घर में काम करने का, हाथ बटाने का, उनको लगता है वो टाइम जो मुझे मिला है फ्री वो सारा टाइम मैं इसमें समर्पित कर दूं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये अगर उनको लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं इनमें से, अगर 8 लक्षण बताए थे इनमें से अगर 5 भी हैं तो ये आप मतलब समझ सकते हैं कि वो एक रिस्क पे हैं, उनको सहायता की जरूरत है।
1: अच्छा, तो सर इस पे अभी कंट्रोल कैसे पाए हम?
0: ओके, तो इन पे कंट्रोल के लिए हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। मतलब हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस तो है लेकिन हमें उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसका हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास एक्सेस तो आ गया है लेकिन उसको यूज़ कैसे करें उसका एक्सेस नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स। तो इसमें हम युवकों को और जो एडोलेसेंट्स हैं इस उम्र में उनको हम कुछ स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि एक होता है स्किल जिसमें बोलते हैं फ़ोन बास्केट स्किल।
1: अच्छा।
0: उसमें जब ये फैमिली मेम्बर्स को भी बताना पड़ता है, ज़रूरी है कि सभी जो फैमिली हैं इंक्लूडिंग युवक जो हैं उसमें, वो शाम को हमें एक टाइम डिसाइड करना है, हो सकता है 7 बजे या हो सकता है 8 बजे या कुछ एक समय, लगभग उस टाइम पे सारे जो अपने फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, आईपैड है या और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, उसको उस टोकरी के अंदर डाल देना है। उसके बाद उसको वहां से निकालना नहीं है अगले दिन सुबह तक।
1: अच्छा।
0: अगर बीच में फोन बजेगा तो उठा सकते हैं, लेकिन जो मैसेज आया व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कोई इंस्टाग्राम पे फीड आई, फेसबुक पे फीड आई, स्नैपचैट से कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो कुछ नहीं चेक होगा। अब जो टाइम बचा है चाहे वो 8 बजे हो चाहे 7 बजे से रात को 10-11 बजे तक, वो सारा आपने ऑफलाइन एक्टिविटीज में बिताना है।
1: अच्छा।
0: तो ये इसे बोलते हैं फोन बास्केट स्किल। सेकेंड होता है कि अपने सेम शाम के समय या पूरे दिन आपको कोशिश करनी कि अपने जो नोटिफिकेशंस हैं उसको साइलेंट मोड में डाल देना है। तीसरा है इसे बोलते हैं स्टैगर्ड रिस्पांस, मतलब हमें हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है इन अपने स्मार्टफोन पे रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर फोन देखें, ये काफ़ी मुश्किल और इम्पॉसिबल लगता है लेकिन नहीं तो फिर ये प्रीऑक्यूपेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा।
0: तो कोशिश करें कि 3 घंटे में एक बार अगर अपना देख सकें मोबाइल फोन, अगर और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का है उसमें लिखना पड़ेगा आपको अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसमें लिखना पड़ेगा कि मैं जो है अपना मोबाइल फोन मैसेजेस के लिए इस समय देखूंगा। 3 घंटे अगर ज्यादा लगता है 2 घंटे, तो अगर किसी को उससे ज्यादा तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो है, तो अगर बहुत ज्यादा तुरंत चाहिए तो उसमें लिखना पड़ेगा कि अगर तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए तो कृपया कॉल करें, जिससे कि आप फ्री हो जाएं। नहीं तो हमेशा आप एक उसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं थ्रू आउट द डे, पूरा दिन आप उसी को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। चौथा है कि जब भी आप दूसरों से बात करें तो मोबाइल फोन को सीधा पॉकेट में डाल के बात करें, हाथ में रख के बात नहीं करें। इससे आपके जो रिश्ते हैं वो लेस सेटिस्फाइंग बनते जा रहे हैं और इनसे जो है आपके जो रिश्तों से जो आपको पहले खुशी मिला करती थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, और आपको ये लगने लगा है सबको जो भी इस्तेमाल करते हैं फोन कि ये स्मार्टफोन से ज्यादा खुशी मिलती है, स्मार्टफोन से यूज करने ज्यादा आनंद मिलता है, तो इसको ज्यादा यूज किया जाए। और एक स्किल है उसे बोलते हैं नो फोन जोन्स। घर में जो है पेरेंट्स को और युवकों को हमें कॉमनली डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बेडरूम है और जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पे फोन किसी का भी नहीं जाएगा, ना पेरेंट्स का जाएगा और ना ही बच्चों का जाएगा। तो उसको नो फोन जोन डिक्लेयर करना। और आखिरी है हम बोलते हैं जैसे हम उपवास रखते हैं खाने का उपवास, उसी तरह से डिजिटल फास्टिंग करना।
1: अच्छा।
0: तो डिजिटल फास्टिंग में हम पूरा दिन के लिए प्रपोज करते हैं लेकिन ये कई बार नहीं सक्सेसफुल हो पाता है। तो जो सक्सेसफुल हुआ है हमने देखा है अपने युवकों में, हमने हमारे क्लिनिक में, वो आधे दिन सुबह उठते हैं लगभग जब भी 9 बजे या 7 बजे उठते हैं, वहां से लेके 5-6 घंटा 1-2 बजे तक वो कर पाते हैं। तो अगर कहीं से भी आप शुरुआत करते हैं 2-3 घंटे से ही फास्टिंग करना तो अच्छी बात है। देखिए कि कितने देर तक आप जा सकते हैं, हफ्ते में एक दिन कोशिश करिए कोई आधा दिन जो है आप फास्टिंग अगर कर सकें, क्योंकि इससे जो है आपको जो ये जो टेक्नोलॉजी यूज है या स्मार्टफोन एडिक्शन है इससे आप अपने आप को दूर रख पाएंगे। तो ये कुछ हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं और इसे में लर्न करना भी बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अगर आप इसे नहीं लर्न करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तरह से इसके न्यू एप्लीकेशंस और फीचर्स आ रहे हैं ये आपको यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी आपको यूज़ कर रही है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने आखिर में कि टेक्नोलॉजी हम नहीं यूज कर रहे हैं, हमें टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM के LE कनसू और आज के इस विशेष प्रोग्राम में मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बात चल रही है। हमारे साथ है डॉक्टर नितिन आनंद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस निमांस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने अब तक डिस्कस की और ये जो मोबाइल

0: एडिक्शन है उसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। ये जो डिजिटल डिटॉक्स है वो क्या है और इसे दैनिक जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं?
1: सो जो डिजिटल डिटॉक्स है ये अभी मैंने जो पहले बताया कि हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल्स उसका एक नेक्स्ट लेवल है।
0: अच्छा,
1: जैसे डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसमें हमें कुछ समय तक हमें पहले से निर्धारित करें कि हमें कितने समय तक इसका यूज नहीं करना है और उसको हमें उससे दूर रहना है। तो मिनिमम जो होता है वो कम से कम एटलीस्ट स्टार्ट करना पड़ता है 3 घंटे से डिजिटल डिटॉक्स करना अपने आप को। डिटॉक्स मतलब जब हम टेक्नोलॉजी से दूर रहें, जब हम दूर रहेंगे तो हमें वो समय उससे फ्री मिलेगा और उस टाइम पे हम जो भी अपनी बाकी दिनचर्या के कार्य हैं वो करने हैं वो सारे हमें कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं और मैं कुछ स्टडीज़ के ऊपर आपको एक समरी में बताना चाहूँगा। ये जो स्टडीज़ की गई हैं ये बाकी बहुत सारे देशों में की गई हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके और साउथ कोरिया में ये वैज्ञानिक प्रयोग किया गया है कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जब करा आता है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो पहला तो पाया गया कि अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हैं अपने आप को और कुछ निर्धारित समय के लिए अपने आप से प्रण लेते हैं कि हमें यूज़ नहीं करना है टेक्नोलॉजी, तो ये पाया गया कि जो ड्यूरेशन ऑफ यूज़ है, मतलब जितने समय तक आप यूज़ करते थे पहले अपना स्मार्टफोन, वो 6 स्टडी में उन्होंने प्रयोग किया और 6 की 6 में पाया गया कि ये सफल रहा। दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेशन। मोबाइल फ़ोन जो होता है हमारा सेल्फ रेगुलेशन बहुत ही कम कर देता है। हमारा खुद पे, हमारा खुद मनोबल पे खुद रेगुलेट करना चीज़ों को बहुत पुअर हो जाता है। तो ये पाया गया कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया और उन्हें पाया गया कि 1 स्टडी में वो सक्सेसफुल रहा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है प्रोकास्टिनेशन, मतलब जो काम आप डिले कर देते हैं कि इसे बाद में करेंगे, ये इसी की वजह से होता है। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन पाया गया, 2 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया और दोनों की दोनों में ये बेहतर हो गया। चौथा जो था स्लीप, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी जो है स्लीप जो है वो बेहतर हो गई, उन्होंने 1 स्टडी में पाया गया कि ये बेहतर हो गई। ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो पाया गया 8 स्टडी में उन्होंने स्टडी किया था और उन्हें 4 में से 8 में ये पाया गया कि लोगों का जो सेटिस्फेक्शन है लाइफ से वो बेहतर हो गया जब उन्होंने ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन किया। तो ये सब चीज़ों से करने से ये पाया गया है कि आपकी जो बाकी चीज़ों में जो डिफ़िकल्टी चल रही हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है कि कुछ निर्धारित समय के लिए आप जो है धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल फास्टिंग से, लेकिन डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन मिनिमम 3 घंटे स्टार्ट होता है और ये 2 हफ्ते तक जाता है। जिनको जो माइल्ड टू मॉडरेट डिफिकल्टी, जिनको माइल्ड है वो कम से कम दिन का अपना 3 घंटा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करें।
0: अच्छा।
1: जो मॉडरेट सिवेरिटी के लोग हैं जिनको लगता है कि उनमें ज़्यादा है, अगर कोई भी 3 घंटे से अराउंड कर रहा है तो उसे माइल्ड कैटेगरी माना जाएगा। जो 3 से 6 घंटे यूज़ करता है लेजर टाइम एक्टिविटीज़ के लिए उसको मॉडरेट कैटेगरी मान सकते हैं। जो 6 घंटे से ज़्यादा या 5 या 6 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, काम के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ के लिए, वो सीवियर कैटेगरी में लगभग आ रहा है, तो उसको जो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन है कम से कम धीरे धीरे स्टार्ट करके उसको दिन का कम से कम कुछ नहीं तो 5 घंटा या 4 घंटा से शुरू करना है धीरे धीरे। तो इसी तरह से अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है और बाकी जो चीज़ें जिनमें आपको टाइम देना है, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पढ़ाई में, आपके ऑफिस के कार्य में, कोई नया स्किल लर्न करने के लिए, कोई नई हॉबीज़ लर्न करने के लिए, ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शंस के लिए, फैमिली रिचुअल्स के लिए, क्योंकि ये सारा टाइम यहीं से निकाल के आपने मोबाइल फ़ोन को दिया है। और अगर आप इन एक्टिविटीज़ में टाइम अगर नहीं देंगे तो मानसिक तकलीफें और मानसिक डिफ़िकल्टीज़, चैलेंजेस इन सारे रिलेशनशिप्स में आएंगी, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, ऑफिस वर्क में हो, एकेडमिक वर्क में हो, अपनी फ्रेंडशिप्स में हो, या फिर आपके कोई नए स्किल लर्निंग की एक्टिविटीज़ में हो। और हमने यही पाया गया है कि देखा गया रिसर्च में कि न्यू स्किल लर्निंग अब जो युवकों में धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि सारा समय जो फ्री समय मिलता था उन्हें वो अब स्मार्टफोन में जा रहा है।
0: करेक्ट सर, हम हमारे श्रोताओं को क्या बताएंगे कुछ इजी टिप्स जिससे मोबाइल उपयोग का वो कम यूज़ करें?
1: ओके, सो इजी टिप्स में हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कोशिश करें कि एक तो नो फोन जोन्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने घर में निर्धारित करें कि नो फोन जोन्स कौन सी हो सकती हैं। वो हर किसी के घर में अलग अलग हो सकती हैं, तो पहले नो फोन जोन डिसाइड कीजिए जिससे कि आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करने में रेगुलेशन आएगा। और ये हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें एब्सटिनेंस नहीं कर सकते। एब्सटिनेंस मतलब पूरा इससे परहेज नहीं कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: हमको यूज़ तो करना पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उसको हम रेगुलेट कैसे करें? तो पहला है कि नो फोन जोन्स अपने घर में निर्धारित करें, अपने लिए निर्धारित करें, जिससे कि आपका टेक्नोलॉजी पे यूज़, जो टेक्नोलॉजी पे जो रेगुलेशन है वो बढ़े, ना कि टेक्नोलॉजी आपको कंज्यूम करे। दूसरा है, जैसे मैंने

0: सेट किया कि अपने नोटिफिकेशन जो हैं कोशिश करें इनको अगर साइलेंट मोड में रखें। तीसरा है कि अपना डेली डिसाइड करना है कि इवनिंग में किस समय के बाद आप जो है नोटिफिकेशंस देखेंगे नहीं। अच्छा। शाम में कुछ समय के बाद। चौथा है कि हमें जैसे मैंने बताया फोन बास्केट का स्किल, तो शाम में अपना फोन जो है हमें एक बास्केट के अंदर डाल देना है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे फोन हो, चाहे और भी कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस हो, और ऑफलाइन एक्टिविटीज में हमें समय बिताने की कोशिश करनी, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली मेंबर्स के साथ हो, या कोई नया स्किल लर्न करना हो, या कोई और माध्यम से हमें आपको अपने आप को रिलैक्स करना हो, वो हमें वापस सीखना पड़ेगा। पांचवी चीज़, जब भी किसी से बात करें तो कोशिश करें कि फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखें और फिर बात करें। इससे आपके रिश्तों में जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आपको मिलेगा वो बेहतर होगा और आपका रिश्ता भी घनिष्ठ बनेगा, नहीं तो वो धीरे धीरे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं और उसकी वजह से फिर आपका मन करता है कि ठीक है मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। और एक और है कि डिजिटल फास्टिंग, जो बताया था मैंने कि डिजिटल फास्टिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अपने खुद पे नियंत्रण जो है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ रेगुलेशन, वो बेहतर हो जाएगा। तो हो सके तो अगर आप मिनिमम, या अगर आप एक घंटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम 2 घंटे से एटलीस्ट स्टार्ट करें।
1: अच्छा।
0: कोशिश करें कि 2 घंटा बिना मोबाइल फोन को यूज करें वे बिताना है आपको प्रतिदिन। धीरे धीरे उससे स्टार्ट करें और फिर देखें उसको बढ़ाएं। तो अगर ये सारी एक्टिविटीज आप धीरे धीरे अपने दिनचर्या में, अपने डेली शेड्यूल में लाएंगे तो वो बेहतर होगा। और हाँ, रात को डिनर के बाद फोन को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जब वो रात के में जब ये फोन हाथ में आ जाता है तो वो डिनर के बाद में वो कैसे 2 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और ये स्टडीज में पाया गया कि लगभग इंडिया में 60-90 मिनट्स का स्लीप का डिले हो गया है, स्लीप स्टार्ट होने में डिले हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बर्निंग इशू है अभी का। सबको मोबाइल की इतनी आदत लग चुकी है कि वो अभी छुड़वाना, मेरे ख्याल से अभी काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, तो वो भी लेना पड़ता है। और उसको लेके मतलब मोबाइल का यूज़ जो हम कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन जो हमें हुआ है, उसको लेके क्या हो सकता है मानसिक रूप में और शारीरिक रूप में, वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया सर। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।
0: या थैंक यू।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो हम केली वेणुधोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। हमारे साथ थे डॉक्टर नितिन आनंद, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस बेंगलुरु में क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। उसी के साथ साथ निमांस के सर्विस फॉर हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिनिक में विशेष तज्ञ सलाहकार के रूप में वो कार्यरत है। ये भारत का पहला टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन क्लिनिक है, जहाँ इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेमिंग और जुआ की लत से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेष उपचार और परामर्श दिया जाता है, खासकर किशोरों और युवाओं के लिए। इसके अलावा वो स्पेशलिटी ओबेसिव डिसऑर्डर क्लिनिक में भी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और उपचार प्रदान करते हैं, जो इस प्रकार का भारत में शुरू किया गया पहला विशेष क्लिनिक है। उनको हम सुन रहे थे और आज का विषय था मोबाइल एडिक्शन, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए। नंबर है 9019904904। ये है केली वेणुधोनी 90.4 FM की प्रस्तुति। नमस्कार।

दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल आपके? बाबा देखकर तो लग रहा है एकदम चकाचक है। स्वागत है आप सबका आपके और हमारे पसंदीदा शो बी रिलैक्स में, और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो दोस्त यानी कि आरजे आयुष। और दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ जबरदस्त गाने, और साथ ही देने वाले हैं आपको कई सारी ऐसी जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। आज का ये एपिसोड या टॉपिक होने वाला है आपकी सेफ्टी के लिए, और इस टॉपिक को हमने नाम दिया है #RoadSafety। That means navigating the path to the safer journey। So हो जाइए तैयार और कर लीजिए अपने रेडियो और चैनल की वॉल्यूम एकदम फुल, और सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वन मोर टाइम टू योर फेवरेट शो। आप सुन रहे हैं बी रिलैक्स ओनली ऑन विनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। और आज हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी के ऊपर, यानी सड़क सुरक्षा पर। दोस्तों, रोड सेफ्टी इज अ क्रिटिकल इशू दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज एट लार्ज। तो रोड सेफ्टी के इस टॉपिक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी में हम लोग सीखते हैं इसके मेजर्स एंड प्रैक्टिस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड फैटलिटीज ऑन द रोड्स। दोस्तों हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा था कि आजकल सड़क पर होने वाले हादसे कई ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे कई सारी जाने जा रही हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसके जो मैं आपको बताता हूँ। और ऐसे में जब हमें पता होता है कि हमें हेलमेट पहनना है या फिर स्लो ड्राइविंग करनी है, और फिर भी हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हादसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हादसे होना स्वाभाविक भी है। चलिए करेंगे बात थोड़ी गहराई में आफ्टर सम सुपर हिट सॉन्ग्स। तो कहीं जाइएगा मत और सुनते रहिएगा हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

आपका एक बार फिर आप सभी के पसंदीदा शो बी रिलैक्स में और आप सभी ने ट्यून कर लिया है बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन यानी वेनु ध्वनि 90.4 KLE करसू। दोस्तों, रोड सेफ्टी मतलब केवल रूल्स फॉलो करना ही नहीं होता है, ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी जिम्मेदारी होती है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड अदर्स। हर साल एक्सीडेंट की वजह से कई सारी जाने जाती है और एक परिवार को पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है, साथ ही सोसाइटीज को भी एक शॉक में डाल देती है या एक दर्द में डाल देती है। इंश्योरिंग रोड सेफ्टी इज नॉट ओनली अ मॉरल ऑब्लिगेशन बट ऑल्सो एन इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पेरेटिव। एक सेफर रोड एनवायरमेंट कई हद तक हेल्थ केयर कॉस्ट को भी कम कर सकता है, प्रोडक्टिविटी को भी कम कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को इनहेंस कर सकता है या बढ़ा सकता है। दोस्तों, एज अ सिटीजन इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप इन रोड सुरक्षा रूल्स को रूल्स की तरह ना देखें, अपनी जिम्मेदारियां समझें और हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए करेंगे आपको थोड़ा सा एंटरटेन। तो सुनते रहिए हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE का नसू।

हेलो नमस्कार, बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा आपको हमारा इंतजार रहता है, वैसे ही हमें भी रोज शाम 5 बजे आपका इंतजार रहता है, ताकि आपकी और हमारी थोड़ी सी बात हो पाए। और 5 बजते ही हम और आप ट्यून कर लेते हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु, जहां आप सुनते हैं मुझे यानी RJ आयुष को। दोस्तों, कुछ कारण मैं आपको बताता हूं एक्सीडेंट्स के, जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं और अवॉइड करना भी चाहिए। पहला, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मतलब आप ड्राइव तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और होता है, विच इज नॉट एट ऑल सेफ। स्पीडिंग यानी तेज गति से गाड़ी चलाना, जो आपको अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक एंड ड्राइव, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर एक्सीडेंट्स, एंड नेवर drink and drive. Overuse of drugs, overthinking, reckless and fatigue are some of the common culprits. और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे खराब रोड या फिर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, poor vehicle maintenance यानी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से सर्विस ना कराना या सर्विस में ना रखना, lack of safety facilities, ये भी एक कारण हो सकता है। Addressing these factors requires a multifaceted approach that involves education, enforcement and infrastructure development. चलिए बात करेंगे कुछ strategies की, जिससे हमें बहुत सारी मदद मिल सकती है। After this super hit songs, या सुनते रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

हेलो वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन एंड पीपल ऑफ ऑल द एजेस, आप सुन रहे हैं वेलकम का सबसे ट्रेंडी शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनुध्वनि 90.4 KLE कनासू, और मैं हूं आरजे आयुष आपके साथ हमेशा बना हुआ। दोस्तों, स्ट्रेटजीज जैसे एजुकेशन एंड अवेयरनेस, प्रमोटिंग रोड सेफ्टी, एजुकेशन फ्रॉम अ यंग एज कैन इंस्टिल एंड रिस्पॉन्सिबल हैबिट्स इन फ्यूचर ड्राइवर्स। और दोस्तों, अवेयरनेस कैंप्स भी होना चाहिए जहां ये समझाया जाए कि भैया ड्राइव करते वक्त किसी टेक्स्ट पर बात ना करें या कॉल पर बात ना करें, जहां ये बताया जाए कि सीट बेल्ट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे आपका बर्ताव रोड पर काफी हद तक अच्छा हो सकता है। स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉज एक्ट्स एज अ डिटरमेंट टू रेकलेस ड्राइविंग बिहेवियर। इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम्स जैसे स्पीड कैमरास या फिर चेक पॉइंट्स काफी हद तक मदद कर सकते हैं रोड वायलेंस को कम करने में और सही ड्राइविंग प्रैक्टिस करने में। जानेंगे और भी स्ट्रेटजीज के बारे में, बट आफ्टर दिस अमेजिंग सॉन्ग, तो आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनुध्वनि 90.4 KLE कनासू पर।

दोस्तों आज का ये एपिसोड भरा हुआ है कई सारी जानकारियों से। उम्मीद है आपको भी ऐसी चीजें पता चली होगी जो शायद आपको ना पता हो। दोस्तों सेफर रोड मींस सेफर यू। चलिए एक दो तरीके और बताता हूँ मैं इन्हें प्रिवेंट करने के लिए। पहला, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वेल डिजाइंड रोड्स विद क्लियर साइनेज, प्रॉपर क्रॉसिंग, सेपरेट साइकिलिंग एंड वॉकिंग लेन्स कैन क्रिएट अ सेफर रोड एनवायरनमेंट। राउंड आउट, स्पीड बम्प्स एंड ट्रैफिक क्लेमिंग मेजर्स भी मदद कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जिसका मतलब है व्हीकल सेफ्टी टेक्नोलॉजी, जैसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक या लेन से बाहर जाने पर एक वार्निंग इंडिकेशन जो आपकी गाड़ी में आती है, एंड एडप्टिव क्रूज कंट्रोल जो ड्राइवर को थोड़ा सा असिस्ट कर सकते हैं क्रैश होने से पहले, और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कैन ऑप्टिमाइज ट्रैफिक फ्लो जिससे रोड पर भीड़ और कंजेशन काफी हद तक कम हो सकता है। और अब आप कर दीजिए स्ट्रेस को बाय बाय, क्योंकि आपके मनोरंजन के लिए हम बजाने वाले हैं कुछ सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स। तो कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसूपर।

हेलो एंड वेलकम बैक पीपल। आज के इस बेहतरीन एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जरूरी टॉपिक के ऊपर जो सबको पता तो होता है लेकिन कोई भी इसे 100% तरीके से फॉलो नहीं करता है। हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी के ऊपर और आप ट्यून कर चुके हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, रोड सेफ्टी कोई रूल फॉलो करने का मैटर नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाइल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ क्रूशियल रोल्स इन एनहांसिंग रोड सेफ्टी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। हर ड्राइवर को या साइकिलिस्ट को अपना अपना एक्शंस बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि भैया हम रोड पर रूल्स फॉलो कर रहे हैं और उसको करना भी चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ड्राइव करते वक्त म्यूजिक सुनना भी एक खतरनाक हो सकता है आपके लिए। हमेशा अपने म्यूजिक सिस्टम्स का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपको पता रहे कि भैया आजू बाजू में जो गाड़ियां चल रही है वो आपसे एक पर्याप्त दूरी बनाए रखी है। साथ ही दूसरों के राइट्स और सेफ्टी को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे ओवरऑल सेफ्टी काफी ज्यादा और हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप भी इन सब बातों का हमेशा ख्याल रखें और प्रण लें कि आप रोड सेफ्टी को अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। और इसी बात पर आपको मैं सुनाऊंगा कुछ दिल को छू जाने वाले गाने ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनासू पर।

हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू आरजे आयुष के साथ। दोस्तों, जैसे कि आज के एपिसोड में हमने बात की कि रोड सेफ्टी इज अ कोलैबोरेटिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स। बाय प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन, इन्फोर्समेंट रेगुलेशंस, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अच्छी सड़कें और अच्छी टेक्नोलॉजी, हम लोग साथ में मिलकर रोड पर हो रहे हादसों को खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। द पार्ट टू सेफर रोड्स में बी चैलेंजिंग बट लाइफ सेव्ड एंड द सोशल बेनिफिट्स गेन्ड मेक एवरी एफर्ट वर्थवाइल। याद रखे, हर वो सेफ डिसीजन जो हम लेते हैं व्हाइल नेविगेटिंग द रोड्स, वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे बेटर फ्यूचर की ओर। उम्मीद है आज के इस एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको बड़ा ही मजा आया होगा। जल्द मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिएगा हमारा शो वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर, यानी आरजे आयुष के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यूनिथोनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

0: प्यारे,
1: जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुन और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु धुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।